कुना कुनामा अनि मेरा प्रत्येक धड्कनहरूमा तिमी नै छौ मेरो मन मस्तिष्कमा। तिमी जहाँ भए पनि युगौँ युग रहनेछु तिम्रो साथमा।